FM 101.5 MHz पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंभौर चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित

0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं भी आपने सुने दिल्ली से रेले हिंदी में समाचार एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति गीत के साथ।

इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है, लीजिए सुनिए। हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

सवेरे 6:35 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम। कार्यक्रम होगा श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। सवेरे 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से रिले मॉर्निंग न्यूज़।

सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे अर्जुन राव और सरिता खरवाल की आवाज में कार्यक्रम लोकरंग। सवेरे 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे गाने नए पुराने। सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम पिटारा। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक होंगे एनसीईआरटी।

12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती से यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

1.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसे खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
2: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
2: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी।
2: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में।
2: हाँ हाँ।
1: तो बड़े सुनने को
2: बहुत
1: प्रिय होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
2: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहन साहब की संगीत रचना
2: जी।

0: व्यापक ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है। जैसे रूपक की 7 मात्रा है,
0: जी जी,
1: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धातिन तातिन धा धा धिन धा, तो ये जो है ये रूपक है के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी के भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा ले या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा ले,
0: ऐसा नहीं होता।
1: ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
0: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
1: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
0: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं।
1: जी जी
0: जी जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है, और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे।

0: और गीत है रविंद्र जी
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ।
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले
1: बिल्कुल।
2: हाँ।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीप चंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीप चंदी 14 मात्रा का। फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मजा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्न धनना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड, और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: रूपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं। अब सुनिए आपका पसंदीदा फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म दो रास्ते का ये गीत सुनने के लिए। पचीपिया सवाईमाधोपुर से रामगोपाल वर्मा, कुलदीप वर्मा, प्रभुलाल वर्मा और मोहिनी देवी द्वारा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म चिंगारी का ये गाना सुनने के लिए, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया द्वारा। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म चीता का ये गीत सुनने के लिए पिपरजा सागर एमपी से। उमा शंकर, शांति, प्रियांशी, नंदनी, माधव, यशवंत और सिमरन पटेल द्वारा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइश आई है जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, अंकिता सिंह, कृषभ सिंह और वेदा सिंह द्वारा। गीत सुनना चाहते हैं फिल्म अपने रंग हजार का ये गीत।

श्रोताओं, अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत सुनने के लिए। मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, द्योमनी और पुरंजे द्वारा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म गुनाह का ये गीत सुनने के लिए। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जालिम सिंह द्वारा लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: डॉक्टर टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.teli-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म वारिश का ये गीत सुनने के लिए। रायपुर झालावाड़ से मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा। लीजिए सुनिए फिल्म वारिश का ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइशाई है फिल्म मोहरा का ये गीत सुनने के लिए। हैकड़ा चौथ का बरवाड़ा से कैलाश तंवर, विमलेश तंवर और मुस्कान द्वारा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का मोहरा फिल्म से ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म जय संतोषी माँ का ये गीत सुनने के लिए। महमदाबाद गुजरात से कृष्ण भाई रेवारी, हीरा, कमल और विजय द्वारा। डीजे सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अब हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत सुनने के लिए। गोंदन दतिया मध्य प्रदेश से ब्रजकिशोर कुशवाहा रामरति सोनम और हर्षित द्वारा। लीजिए सुनिए फिल्म सरस्वती चंद्रम का ये गीत।

0: दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को

0: जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से

0: आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
2: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
3: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yog worldwide.
3: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी

श्रोताओं, अभी आपने सुना अर्जुन राव और सरिता खरवाल की आवाज में कार्यक्रम लोकरंग एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मॉनसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रह

0: संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपूतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों

0: को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अलसुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपूतली बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं भी अपने सुनिए जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM 101.5 MHz पर या आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए गीत व गजल पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गजल के साथ।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना ये दर्शन रावल की आवाज में ये गाना। इस गाने के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए गाने नए पुराने।

अभी आपने सुना फिल्म आराधना से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना। लीजिए सुनिए अगला गाना।

अभी आपने सुना फिल्म जुबान से मंदार देशपांडे और राहुल वर्गीस की आवाज में ये गाना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना फिल्म नदियां के पार से जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में ये गाना। लीजिए सुनिए अगला गाना।

अभी आपने सुना फिल्म कामचोर से किशोर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गाने के साथ गाने नए पुराने यहीं संपन्न होते हैं। FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारतीय राष्ट्र सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स है 0222867 0288, यानी 2867 0288, और 0224002466 यानी 400-2466। तो सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं। मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश से फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपना उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: फिल्म का नाम है हम आपकी है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर एंड एस पी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसी जदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए सर जी। जब एमपी था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: हाँ, मी नचकने पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा। सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
1: राकेश जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, ठीक है।
1: क्या काम करते हैं?
0: दुकान करते हैं मोबाइल के, टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
1: जी,
0: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
1: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
0: आशा पिक्चर का एक गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और चालू राजा।
0: बिक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे है सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा, कितनी बारिश हुई? बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं हुई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अबे तो नौ तपा चल रहे कि खत्म हो गए?
1: सर बिल्कुल, 3 दिन बाकी हो सर, जगह वो तनक को
0: तनक बाकी है। 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए, फिर मौज हो जाए। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जी बताओ?
1: हमको फलन है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए ददारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: सर जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात करके
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा वक्त का है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्

वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बचाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरे भैंस को डंडा।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है।

भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है अंगारा मेरी भैंस को डंडा।

0: चांद बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं इस लटारी है, कजरारी उसकी अखियां है, इस बात अपनी यारी है। मैंने तो अपनी कल्लो का है नाम रखा, है नाम रखा जहां नारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का भूखा करती थी।
1: मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का भूखा करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का भूखा करती थी।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो।
2: हाँ जी कौन?
3: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
2: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
2: अच्छा बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
3: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
2: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
3: जी।
2: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
3: गर्मी से बचने के लिए बाहर जाए तो टॉवल लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
2: बहुत सही, बिल्कुल।
3: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
2: सही बात है। अच्छा बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
3: गाना फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
2: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोडोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म के गाने सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना रहे इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर बहुत बढ़िया है, एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर, बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं?
0: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये तीन दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर वो वाला, फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे नौ।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे में नहीं आप तो। मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया, क्या बात है।
0: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आपके बड़े सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। यस,
0: क्या बात है। देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो क्या बात है।
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं, आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा, विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहा है आपके साथ, है ना।
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूँ, जीवन का यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी,
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी,
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको।
1: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले याद है, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ क्या

0: बातें
1: क्या बात है। थैंक यू
0: जी, शुक्रिया।
1: से आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम 57 नाउ और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
1: सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बस।
0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू
0: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम।
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और कई इसके कारण होंगे भैया, सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंग के गीत के बोल है, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662, अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं, तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, तो रोजाना सुनिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में। एल्बम का नाम नबील।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है। रंग

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक है NCERT।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन।

0: नब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भोटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ci

0: nct.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
1: सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज,
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे, क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।

0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
2: हुआ? मुझे भी कैसे हो सकता है
1: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम्हें कैसे हो सकता है? आया था
2: राजा नकली ही ना तो सकता।
1: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
2: राजा
1: सभी ने बोला कि नकली है।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
4: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
5: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं, चल चलू मैं, जल्दी सीख भी जा।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग

0: खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल,
1: पोंगला पोंगल,
0: उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, भी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT, FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा?
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे, मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
2: सखी सहेली।

کرنے والا ہم سفر ہم راد ہوں تا قیامت جو چراغ

है छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू तेरी हंसी की कीमत क्या

नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना यार के हंसते ही

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्र सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए कुछ ही देर में जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
2: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है, सब कुछ हमें देती है। इसको कुछ हम भी देना तो सीखें, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।

0: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और सीएसआईआर सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एमओयू किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, एसओएस आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं भी अपने सुने जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

तो भी ये गाना आपने सुना फिर वही दिलाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और ज्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई है, पहली बार आई है और कहां गायब थी। भाई गायब तो कहां थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा है मानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं, हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, जहां दिन भर महुआ पर झूले रात को चू पड़ते हैं फूल, जहां दिन भर महुआ पर झूल रात को चू पड़ते हैं फूल, बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल, भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां, विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी है, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की, पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चंचलता नीले नंबर अंबर चांद जवाए हमको तरसाए, बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं, तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था वो हम आपको बता रहे हैं, तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्जर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं, अगर तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूं, बादलों का आनंद ले रहा हूं, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नजारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियां, आसमान बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द।

सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: अगला गाना हम क्या ले सकते हैं, ये भी अंदाजा लगाइए जरा।
1: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि

मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे। भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूं तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या डेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 2 4 बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार है और ये

0: ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है। अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखी भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहां एक खाने पीने की चीजें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहां तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में पॉलीथिन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।
1: ये रात

उन्होंने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनू उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोता

फेनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं। गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे। अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी। वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने। बताइए कौन है इसमें कलाकार। गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटकेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटकेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदे बरसने लगी की गाना, और नील गगन की छाओं में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर, ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: water and we have to plant that.
1: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत

0: मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोकरी है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी की बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा। और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए और आप अपने

0: इनका कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र की रहे।
0: अच्छा अरे वाह बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ पढ़ाई तो खत्म है, मेरे को से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हुई जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है,
0: जी,
1: तो
0: हाँ।
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे उनकी आवाज में। तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कौन निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: आप बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।

0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो इससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। अच्छा, छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो क्या नहीं क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी मैम, अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर से बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की

0: पास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: वो तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता सुन, और किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: और हाँ, और दूसरा और सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना। घर में मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पिया जो जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन

0: इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ में मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते बुझवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना सुनूंगी जागू साइड खान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: अच्छा गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरे बच्चे को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है। जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी, मतलब अभी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही करते हैं डांस,
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप

0: तो ये आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउस वाइफ है। क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है, और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
0: बिल्कुल।
1: जो है
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी जी जी जी।
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए, वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया।

0: है, बहुत अच्छी बात है ये।
1: और चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी
0: वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: तो बिल्कुल आते हैं सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना। तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोते है।
0: तो आप कहाँ से
1: मैं
0: हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता
1: जी
0: है
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाटवर फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना,
0: सुजाता का कौन सा?
1: 2000 साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई है पता है? कह रही थी जो हुकुम, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकी अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी

छुट्टी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसे क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती है कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुँच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुँचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हूँ, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया, भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठी गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

ये लगता है कि जहाँ

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखे इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेटकर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरानी हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी

अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी। भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे। अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार

0: करता था कि वो निकले एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम, ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंबोर चैनल है FM 101.5 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं, अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम करते हैं रोचक और ज्ञान भरी बातें और साथ ही करते हैं संगीत से आप सभी का मनोरंजन। श्रोताओं, मैं आपका रेडियो दोस्त राजकुंदन। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे, आज की बात में भारत का उच्चतम न्यायालय के बारे में, और कार्यक्रम के अंत में ज्ञान मंजरी में बात करेंगे हम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। और मैं आपको बीच बीच में सुनवाऊंगा बड़े ही प्यारे प्यारे गीत। तो साथियों, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से मीठे से गीत के साथ।

तो साथियों, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। साथियों, आज हम बात करेंगे आज की बात में भारत का उच्चतम न्यायालय के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में त्रिपक्षीय न्याय व्यवस्था है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और सर्वोच्च स्तरीय। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में। दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत का गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। यह मुख्य न्यायाधीश होता है जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश और भी होते हैं और इसके पास मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती है। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में यह मुख्य रूप से संघ के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों और न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील करता है। साथियों, यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार या राज्य सरकारों बनाम केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने का भी कार्य करती है। दोस्तों, एक सलाहकार अदालत के रूप में यह उन मामलों की सुनवाई करता है जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सकता है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के भीतर और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी अदालतों पर बाध्य हो जाता है। साथियों, भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। और साथ ही दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरिलाल जे कानिया थे। तो साथियों, जानकारी हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो साथियों, आइए हम भारतीय उच्चतम न्यायालय की जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हमने बात की थी कि भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय होगा। और दोस्तों, हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरिलाल जे कानिया थे। दोस्तों,

संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करें। साथ ही भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद 2 दिन बाद ही भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। दोस्तों, उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के नरेंद्र मंडल, जिसे हम प्रिंस ऑफ चैम्बर्स कहते हैं, उसमें हुआ था। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भी 1958 तक यह वही नरेंद्र मंडल में संचालित रहा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर पहुंचे हुए भारत की संघीय अदालत और न्याय समिति को प्रतिस्थापित किया। दोस्तों, वर्तमान उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 22 एकड़ जमीन पर एक फजागर भूखंड पर बनाया गया है। निर्माण का डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भिखाजी देवलालीकर द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था। इस संख्या को बढ़ाने का दायित्व संसद पर छोड़ा गया था। प्रारंभिक वर्षों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की पीठ एक साथ बैठा करती थी। जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे, भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34 कर दी गई। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्तमान में वे 2 या 3 की छोटी न्यायपीठों, जिसे हम जिन्हें खंडपीठ कहते हैं, के रूप में सुनवाई करते हैं। दोस्तों, संवैधानिक मामले और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्यान देनी हो की सुनवाई 5 या से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है। कोई भी पीठ किसी भी विचाराधीन मामले का आवश्यकता पड़ने पर संख्या में बड़ी पीठ के साथ सुनवाई के लिए भेज सकती है। साथियों, सर्वोच्चतम न्यायालय की जानकारी हम आगे भी जारी रखेंगे। अब फिलहाल एक और सुनते हैं बड़ा ही प्यारा सा गीत।

साथियों, संविधान में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं और इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। साथ ही अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी। दोस्तों, आइए चलते हैं संगीत की तरफ, आपको ले चलते हैं एक प्यार भरा गीत।

तो साथी, हम बात कर रहे थे भारतीय सर्वोच्चतम न्यायालय के बारे में। दोस्तों, न्यायाधीश बनने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के तो उसकी कुछ योग्यताएं होती है, जैसे वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या तो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। दोस्तों, वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल दुर्व्यवहार, असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के राष्ट्रपति तब पदच्युत करके करेगा जब संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा संसद के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमताओं के आधार पर लाया गया हो, के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो। साथियों, ये थी कुछ जानकारी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के बारे में। अब साथियों, आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी ज्ञान मंजरी में विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो साथियों आइए बात करते हैं कार्यक्रम के अंतिम छोर में ज्ञान मंजरी के बारे में। साथियों आज हम ज्ञान मंजरी में बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और उसके 2 वर्ष बाद ही यह दिवस मनाना शुरू हो गया था। दोस्तों पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का मंच रहा है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है जिसमें सालाना

143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। दोस्तों, पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिनमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। साथियों, लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना, उनके बारे में, उनसे होने वाले नुकसान के बारे में सोचना और उसे कम करने का प्रयास करना है। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के पीछे हमारे कुछ लक्ष्य भी हैं, जैसे पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, हमें सभी लोगों को साथ रहकर पर्यावरण की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आसपास के कचरे, प्लास्टिक की थैलियों आदि को नहीं जलाना चाहिए। हमें कभी भी अपने पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजनकर्ता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP है। साथियों, 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जिसमें जल, वायु, भूमि तथा मानव, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीव और अन्य कई जीवित पदार्थ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एक नई थीम के साथ हर वर्ष एक बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। साथियों, हर वर्ष हम एक नई थीम तैयार करते हैं जो लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करती है और लोग बड़े बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सेदारी करते हैं। साथियों, जैसे 2024 की थीम हमने रखी थी भूमि बहाल, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना। इसी तरह वर्ष 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य की शुरुआत।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काम आता है। चाहे वह पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे भूमि प्रदूषण हो, चाहे किसी भी तरह का। साथियों, इसके लिए मुझे एक बड़ी ही अच्छी कविता याद आती है, जो कि डॉक्टर ओपी बिलोरे द्वारा लिखी गई थी। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि बड़ से गहराई सीखो, पीपल से सीखो ज्ञान, नीम खड़ा वह सदा कह रहा मत सहना अपमान, कहे आंवला सभी रसों को जीवन में अपना लेना, हे बबूल की साख न शत्रु कभी निकट आने देना। जीवन को सुरभित कर लो और सारे जग को महकाना, इस विद्या को चंदन से ज्यादा कब किसने पहचाना। लता विपट और कंद मूल फल फूल सभी का है कहना, मत कमतर आंखों हमको हम हर प्राणी का है कहना। प्राणों की रक्षा हम करते, लोगों को भी हर लेते, बल बुद्धि यौवन हम देते, कंचन सी काया करते, फिर क्यों हम पर दानव बनकर टूट पड़ा है यह मानव, बुद्धि पर विनाश काले सिद्ध कर रहा यह मानव। अब भी समय शेष है, मौसम में ठंडक भी बाकी है, हिमखंडों के पिघलन की परिणति क्या तुमने आंकी है। इससे पहले कि पानी ऊपर हो जाए सिर से, विश्व उष्मा कम करने को वृक्ष लगाओ फिर से। हे आर्य पुत्र, अब शपथ उठा वन देवी की, प्रकृति माँ की, धरती माँ की रक्षा में अब वानप्रस्थ बीते बाकी। साथियों, ये इस कविता के शब्द बड़े अच्छे हैं और समय इजाजत नहीं देता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, वरना अभी तो बहुत कुछ था आपसे बात करने के लिए। चलो मिलते हैं साथियों कल फिर इसी समय एक नई बात के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। और लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:45 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। शाम 6 बजे सुनिएगा महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम नारी लोक। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आज की बात, विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। अन्य जानकारी में सुनिएगा सोशल मीडिया लाभ और हानि, साथ ही होगा फिल्म संगीत। शाम 6:30 हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:50 पर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे। शाम 7 बजे होगा गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। शाम 7:10 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष। 7:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात 8 बजे होगा किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा जल संरक्षण का महत्व एवं फायदे, नए दौर की नई बातें। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे प्लास्टिक मल्च का उपयोग से फायदे, साथ ही सुनिएगा वार्ता फार्म पौंड निर्माण कृषकों के लिए वरदान।

रात 8:30 बजे सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के स्वर। रात 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। रात 9 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

रात 9:30 से हम आपको सुनाएंगे विविध भारती कार्यक्रम। तो रात 9:30 सुनिएगा आज के फनकार, रात 10:00 होगा छाया गीत, और रात 10:30 से सुनिएगा ढलती जाए रात। रात 11:00 होंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। ये तो था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। FM 101.5 MHz पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है, और लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही गोधुली कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर।

नारी लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी रुक्मणी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ जानकारी की बातें और कुछ मनोरंजन, साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन प्यार ऐसे गीतों के साथ। तो आइए सखियों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

सखियों, आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। सखियों, इस दिन का उद्देश्य पूरे विश्व में समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक मंच तैयार किया जा रहा है। इसमें सालाना 143 देशों से अधिक की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम में पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया है। सखियों, हमें भी यदि स्वच्छ वायु, साफ सुथरा वातावरण चाहिए तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और हमारा जो पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखना है और सभी को स्वस्थ रहना है। सखियों, अब वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए कानूनी सहायता एवं अधिकार। हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें न्याय तक प्रदान करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता विशेष अधिकार दिया गया है। इसके तहत सभी महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के मुफ्त वकील, कानूनी सलाह और कोर्ट फीस का खर्च सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। संवैधानिक अधिकार और कानून। भारतीय संविधान 39(1) का यह अनुच्छेद राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय मिले। इसके तहत आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक, विशेषकर महिलाओं को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में मुफ्त कानूनी सहायता पाने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, घड़ी की सुई हमें अपना कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाने का इशारा कर रही है, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम नारी लोक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी सखी रुक्मणी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम नारी लोक। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:50 पर होंगे राजस्थानी

रायपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत बाहरी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आर्द्र भूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।

0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 3 दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेड़ द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। पूरी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग

0: 5% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
1: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। RBI ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशभर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज सम्पन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपूतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के

0: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रुपए की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधा रोपण, वितरण और जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन और आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश माए चौमासाओं पहली री हलचल सरूफी, कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। रेबे समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट माए कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक माए इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल में थई राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आ जानकारी दीनी। वे कह्यो के बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माए बढ़ोतरी री रेट पहली री 6.9% घटार 6.6% करण रो फैसलो किन्नो। आरबीआई अनिवासी भारतीयां, भारत रा प्रवासी नागरिकां और दूजा पात्र विदेशी निवेशकां सारू इक्विटी बाजार माए निवेश रा मौका ही बधाया है। सरकारी दूजा देशां रा संस्थागत निवेशकां ने सरकारी शेयरां माथे भेवण वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स माए छूट दीनी है। देश माए पॉलीमर आधारित नोट चलावण रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंकां री शाखावां और एटीएम माए नोटां री कमी री शिकायतां मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माए नकदी मौजूद है और इनरी कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटा माथे वेवन वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज

0: पर्चो दाखिल कीनो। वह विधानसभा भवन में चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा सामी नाम पानो भरियो। ए बगत राज्य पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में विपक्षरा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगीरी उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बलियारा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल रे देश री 100वीं रामसर ठौड़ वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश में श्री मोदी कहो के ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहाताल में भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ई उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वे कहो के पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं, तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप तो देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवारा मुजब जीवन रो तरीको अपनावण और धरती ने बचावण रियरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर में राखी जाए कार्यक्रम में श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण माई योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत ई साल प्रदेश माई 10 करोड़ पौधा रोपणो तय करीचियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य माई हरियाली बधावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी जिया। अलवर में सशस्त्र सीमा बल री ओर पौधा रोपी जिया और जनता ने पौधा बांटी जिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू में पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा सरूफे वन रहा हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी सरूफी। राज्य में चौमासाओं पहले रे हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा सरूफे वन रा आसार है। ये बीच 7 जून ताई प्रदेश का कई हल्का माए आंधी बारिश की संभावना जताई ची है। आज राज्य का 14 जिला माए ऑरेंज और 8 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम माए आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रह कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा माए अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर आज राजस्थान और पंजाब में साइबर अपराधा में शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी जिया। ईडी री टीम जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक सागे करीची कार्रवाई रे दौरान मोटी

0: ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਏ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਾਏ ਲਗਨ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਔਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਏ ਕਾਮ ਆਵਣ ਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਪਕੜਿਆ। ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਮਨਾਥ ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਾਰੂ ਜੈਪੁਰ ਕਨਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਰੇਲ ਗਾਡੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਤਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਨੀ। ਖਬਰ ਨਵੀਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾਂ ਦੇਵਸਥਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਵਤ ਕਹਿਓ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਰੀ ਈ ਯਾਤਰਾ ਮਾਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਸਾਰੂ ਸਗਲਾ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कन लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रो करीब 85% काम पूरा वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो कि इन स्टेशन रे हाईटेक मेहमानो सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बधावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माए भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओ सावचेत रहन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कि रेलवे माए सगली भर्तिया ते नियमा रा तहत साफ कोई सागर करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नी वे है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रीठा पड़िया पाछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला माए ई बीमारी मिलता जुलता लक्षण रीठा पड़िया पाछे माना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड माए भर्ती कराई ची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ई महिला माए इबोला संक्रमण री पुष्टि नी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक माए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रूपया री घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो कि पकड़ी जिया लोगा माथे शिकायत करण वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माए आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माए संविदा रा आधार लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रूपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करण वाला रा बाप दादा रा घर माए भागीदार लोगा ने लिस्ट माए नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माए कोई बदलाव नी कीनो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माए पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माए चौमासाओं पहली रही हलचल शुरू हुई। कई जिला माए आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ माए छापा मारिया। इस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।

ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंबोर चैनल है, एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशीष कौर के गाए इस गीत के साथ।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और लीजिए अब सुनिए मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम केंद्र के।

और लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल, मुन्ना और साथियों की आवाज में फिल्म नजराना का ये नगमा। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए सोनू कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया फिल्म गोपी किशन का ये नगमा। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है आनंद मिलेंद ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषकों के लिए।

कार्यक्रम कृषकों के लिए सुनबाड़ा सगला किसान भाई भेड़ान कूथा का राजमल भाई को घनो घनो राम राम। किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे जल संरक्षण का महत्व और फायदे। बड़ा लोग पहली कह गया कि जल है तो

जल ही जीवन है और यह जल की बचत और इको सदुपयोग करवो आपनों एक महत्वपूर्ण दायित्व है जिसु की आप आगे के लिए खेतीबाड़ी के लिए है पीवा के लिए है और कई काम जो आवच प्रकृति में जल सजो के रखवो बहुत जरूरी है क्योंकि अब या बरसात को मौसम आवाड़ो है अभी गर्मी चल रही है और बरसात को मौसम जो ही आओगो तो आप खेतीबाड़ी के लिए पानी को पहले ही संजोर रखनी पड़ोगो क्योंकि रवि फसल जो है वो के लिए आप फार्म पोंड बना रखा तो उनमें वर्षा जल संरक्षित कर रखा था तो वह आपने काम दे चे। किसान भाइयों चाहे फार्म पोंड हो चाहे तो तालाब हो चाहे बोरवेल हो या कुआ आप को पानी की बचत करनी चाहिए। बचत कशा होगी कि आप खेती बाड़ी में जिसा सिंचाई करा चा तो सिंचाई के लिए कई सारी जो उपयोगिता चे जिसा पद्धतियां चे योजना जिस पर सरकार भी आपा को अनुदान दे रही है आपने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति चे ड्रिप इरिगेशन एक फवारा सिंचाई पद्धति चे जी पे भी अनुदान दे रही है एक पाइपलाइन जो पीवीसी या नीचे लाइन गड़ा दे चा आपा खेत में अपना बोर जो साधन है कुआ जहांसू तो ऊपर भी आपा को सब्सिडी दे रही है तो इनसु आपा को देखो एक जल की बचत के लिए ही तो सरकार आपा को अनुदान दे छे तो ई को आपा किसान भाइयों आपने खेत में सिंचाई भी हो जावे और पानी की बचत भी हो जावे तो जिसा आपने जिसा समतल खेत है तो उनमें तो आप पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई करा चा और उबड़ खाबड़ धरती चे जिसा तो ऊपर फवारा सिंचाई को आप उपयोग करा चा और किसान भाइयों जहाँ जहाँ आपने किसान ने बाग बगीचा लगाम लिया चे तो उनमें ड्रिप इरीगेशन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सु आप सिंचाई करा चा जिसु की आपने 20% सुखाई 50-60% तक पानी की बचत हो आपने ये अपना भी रहा है और जो नहीं अपना रहा उनको अपनानी चाहिए कि आपने जिसा अभी पौधा लगाया छोटा पौधा है और पूरा खेत को भरा रहा किसान तो पानी की बर्बादी है। दूसरी नुकसान आपने खेत में की अकाई जुताई करा रहा आप गर्मी में तप बाजा उनको पूरा को भरा रहा तो उनमें बहुत सारी घास फूस हो जावे खरपतवार हो जावे तो उस उकाई से फिर वो खेत की जो है आपने उर्वरा शक्ति नष्ट हो जावे है। अगली फसल ले आऊंगा तो वह कमजोर हो जाए उनमें घास फूस ज्यादा हो जाओ खेत का जो पोषक तत्व है वो खरपतवार खा जाओ तो ई वजह से आप को ड्रिप सिंचाई से काम लेनी चाहिए आप को ये अनुदान भी मिले चे जो पौधा में आवश्यकता हो उतना ही पानी दियो जाओगे और पानी की भी बचत और आपने खेत में भी जो खाली जमीन चे वह न भर पाओ और खरपतवार नहीं होगी। जागरूक और आप को किसान भाइयों अपने खेत को भी बचाना है आप को आर्थिक नुकसान से भी बचना है और पानी की भी बचत करनी है। आज की बचत कल की मुस्कान बिल्कुल सही बात है चाहे देखो पानी की हो चाहे पैसों की हो आप थोड़ा थोड़ा बचा बचा आप अपने गृहस्थी में कुछ जोड़ेगा तो आगे कई अकस्मात काम आ जाओ जो घर परिवार में तो वे दूसरा के सामने आप हाथ न फैलावा तो किसान भाइयों थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए। अब सुनेंगे या मनोरंजन के लिए लोकगीत।

0: प्रगतिशील किसान है जिनसे किया अपना बातचीत कि खेती बाड़ी में अभी कई कई काम करना चाह पाको उनका बारा में। प्रगतिशील किसान को नाम है धर्म सिंह मीना, तो इनकी सुनाया भेंट वार्ता।
1: राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: किसान भाइयों, आज एक प्रगतिशील किसान से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे खरीफ फसलों से बुआई पूर्व खेत की तैयारी। आप बताएं कि अभी जो वर्तमान में किसानों को खेतों में कौन कौन से काम करना बहुत जरूरी है।
2: ये है साहब, अभी जो खेती में काम है वो ये है साफ सफाई का।
1: हाँ।
2: जो पिछली खेती हुई उनका जो कचरा पड़ा हुआ है उसको हम बाहर फेंक देते हैं, खेत से मेंढ से निकाल देते हैं या फिर जला देते हैं उनको, और फिर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। खरपतवार जैसे कीड़े हैं उनको का जो कचरा है वो नीचे चला जाएगा और धूप खा लेगी मिट्टी, तो थोड़ा उससे क्या क्या अगली फसल होगी जो उसके लिए शुद्ध रहेगी।
1: तो जो पिछली जो फसलों के अवशेष है उनको साफ सफाई करें।
2: हाँ सर, क्या है पत्ती निकलाते हैं, पिलाऊ लगाते हैं, जिससे क्या है कि वो धूप पड़ती है ना तो उससे मिट्टी अच्छी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: छीम नहीं रहती है, बीज को मान्य करती है वो,
1: उन्हें
2: बाद में बीज को मांगती नहीं है वो बाद में। हम क्या हर कोई किसान यही करता है और करना भी चाहिए कि खरपतवार है जैसे जुताई करवा लिया, साफ सफाई है खेत की तो सीम निकल जाएगी, तो वो जो कचरा है पहले का वो खत्म नष्ट हो जाएगा, अगली फसल जो आएगी उसके लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी बोने के लिए।
1: इसलिए गर्मी की जुताई करवो बहुत जरूरी,
2: और धूप खाना बहुत जरूरी है सर। मिट्टी जमीन है उसमें मिट्टी जब तक धूप नहीं खाएगी तब तक अगली फसल होगी नहीं,
1: होगी नहीं।
2: हाँ।
1: हर वर्ष जो फसल चक्र का नियम जो है उसको अपनाना से क्या फायदा है किसान भाइयों को।

0: ऐसा है, इस बार हमने बाजरा कर लिया तो अगली बार हम उस खेत में बाजरा नहीं करेंगे, दूसरी फसल कर लेंगे। पर लेकिन ये कि अलग अलग फसल करने से वो क्या है कि खेती एक उर्वर जमीन मानती है उसको, कि एक खेती करोगे तो वो पैदावार नहीं देगी,
1: नहीं देगी।
0: क्यों? इसका सर नाइट्रोजन है, ये जो चेंज होता है तो फसल चेंज करने से ही आता है
1: जी।
0: ये नहीं है कि एक ही खेती करते रहो तो वो होगी, वो अलग अलग हो जाएगी सब, एक करोगे तो कम पैदावार होगी,
1: पैदावार होती है। तो हर बार हर फसल में अलग अलग
0: चेंज करना पड़ता है साहब,
1: रबी और खरीफ फसल दोनों में चेंज करना पड़ता है,
0: चेंज करना पड़ेगा
1: तभी अच्छी फसल।
0: हाँ,
1: ये भी एक बहुत बढ़िया समय है जिसपे अपन चयन करें फसलों का। और फसल की बुआई से पहले और कई जो काम है किसान भाइयों को, जैसे आपने बताया गर्मी की जुताई है और जो फसल अवशेष है उनका भी एक फसल चक्र का नियम है, और भी जो कई सारे जो किसान भाई है कृषि यंत्र है और बाग बगीचों में कहाँ कहाँ काम करना चाहिए।
0: ऐसा है, अब बाग बगीचों में साफ सफाई कर रहे
1: जी,
0: फल है वो आगे अब वो खत्म हो गए तो अब उनको क्या कचरा ज्यादा हो जाता है
1: जी,
0: जैसे नींबू तोड़ लिए, अब जैसे भाई कैरी है इन पेड़ों में जो बाग बगीचे होते हैं तो उनमें क्या कचरा ज्यादा फैलता है, तो उनकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। नहीं, आने वाले उसमें मौसम में बरसातों में उसमें कीड़े पड़ते हैं,
1: कीड़े पड़ते
0: साफ
1: हैं।
0: सफाई नहीं है तो फिर वो पानी का वो नहीं, तो उनको क्या साहब साफ सफाई खतपार मले, जैसे नींबू में तो गुड़ाई करनी पड़ती है,
1: अमरूद के बगीचे भी है
0: आपको, सब में गुड़ाई करनी पड़ती है तब जाके अगली फसल उसमें पैदावार अच्छी आती है
1: जी बिल्कुल।
0: डेंगू का भी डर रहता है तो डेंगू की दवा भी देना पड़ती है सब, दवा देंगे तभी वो पेड़ बढ़िया रहेगा, नहीं तो मर जाएगा वो पेड़, डेंगू खा जाएगी पत्ते से, क्या साहब डेंगू लगती है
1: जी जी जी।
0: इसलिए उनको क्या साफ सफाई बहुत जल्दी है और गुड़ाई करने से क्या नींबू में ज्यादा फल की आमदनी होती है
1: जी। आप जैसे भूमि की जो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा खाद डालते हो?
0: भैंसों का है,
1: गोबर की। किस तरह से डालते हो गोबर की खाद को, ताजा या सड़ा के?
0: नहीं सर, हम डालते हैं जैसे एक साल तो उसको रखते हैं, एक साल के बाद में जैसे अपन ने खड़े में जैसे कोई रख लिया और उसमें अगर वो कचरा पानी डाल दे तो बहुत सदा अगर पानी डाल दिया तो उसका क्या है रस बनना चाहिए
1: जी बिल्कुल सही है,
0: और उसमें लट लगनी चाहिए, तो उससे क्या गंडे जैसे होते हैं एक कीड़ा होता है तो सब वो लगता है भुरभुराहट, केचुआ, उससे उसकी क्या भुरभुराहट होती है, जब वो खाद काम करता है, ताजा खाद काम नहीं करता फसल में
1: बिल्कुल।
0: एक साल रखने या दो साल रख लो उसके बाद अगर खेती में दोगे तो बहुत जल्दी काम करेगा,
1: और ताजा अगर डाले तो नुकसान?
0: नहीं नहीं साहब, ताजा तो कोई काम ही नहीं करेगा,
1: काम भी नहीं करेगा, दीमक भी लगती है
0: और उससे क्या है साहब वो फिर दीमक पकड़ती है
1: बिल्कुल
0: ताजा को, गीला है गीले में दीमक लगेगी तो आने वाली फसल के लिए नुकसानदायक है।
1: अच्छा, किस तरह से डालते हो और फिर अकाई जुताई कैसे करवाते हो, क्या करना चाहिए?
0: पहले तो इसको खेती में डलवा देते हैं, फिर डलना के बाद साहब उसको डलवाने के बाद इसको फिर फैलाते हैं, खुद को फैलाना पड़ता है या मशीनों से फैलवा लें, कैसे जैसे सुंदर बैठे ऐसे अपना किसान भाई काम कर लेता है इसको
1: जी,
0: और करके फिर वो जो हम इसकी जुताई करवाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बरसात हो गई साहब नहीं बैठी ढब तो उसी को फैलाकर उसी पे फसल
1: कर देते हैं,
0: बीज की बुवाई कर लेते हैं।
1: लेकिन सही तरीका तो है कि पहले ही उसको फैला के और जुताई करवाओ,
0: एक जोत साहब पहले हो जाए ना तो उससे क्या मिट्टी में वो
1: अच्छी तरह
0: मिल जाता है और मिल जाएगा तो अच्छी पैदावार के लिए सही है,
1: सही होगा। और देखो धर्म सिंह जी, आजकल क्या है कि अब जैविक खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं किसान भाई भी, और देना भी चाहिए क्योंकि अब रसायन मुक्त खेती यानी रसायनों से बहुत ज्यादा अपनी जमीन बिगड़ चुकी।
0: सर रसायन का उपयोग करना ही तो खेती के लिए हानिकारक हो रहा है, जितने केमिकल उपयोग करेंगे उतना ही खेती खराब होती है।
1: बिल्कुल सही बात है, और अपने ऊपर भी असर पड़ रहा है,
0: और फिर जो इसको अन्न को खाएगा उस पर भी असर पड़ेगा, जानवर खाते हैं उन पर असर पड़ रहा है, जो साहब दवा जो पेड़ को पौधों को नहीं छोड़ दी उनको जला दे तो बताओ ये आदमी इसको कैसे खाएगा, फिर पशु भी मर जाएंगे इससे तो, और ये जो बीमारी फैली है इसी का कारण है।
1: सही बात,
0: ये खेती जो कर रहे हैं ना अपन केमिकल दे दे के फसल को के ज्यादा बढ़ा रहे, बढ़ा नहीं रहे उल्टा फसल के उसमें नुकसान कर रहे हैं,
1: जमीन को भी और हमको पशुधन को सबको नुकसान,
0: सबको मानव
1: आर्थिक नुकसान भी हो रहा,
0: आर्थिक भी होगा इसमें, आज पता नहीं चलेगा दो दिन बाद में पता चलेगा इससे उसका नुकसान तो है ही।
1: सही,
0: और केमिकल जितने डाल लो साहब सब नुकसान करते हैं,
1: और
0: खेती में तो ये उपयोग में लेने ही नहीं चाहिए, सबसे बढ़िया गोबर खाद लेना चाहिए, भैंसों का है गायों का बकरी का सबसे बढ़िया काम करता है
1: ये, अच्छा काम करता है। एक बार डाल दो तो साल दो साल तीन साल
0: चलता है साहब, एक बार खाद डालो।

0: तीन साल तक उस खेत में जरूरत नहीं है।
1: सही बात है।
0: सबसे बढ़िया खाद ये है कि तीन साल एक बार डाल दो, तीन साल में दोबारा डाल दो
1: जी
0: और खेती फसल चेंज करते रहो आप। फसल को इस बार ये कर ली, अगली बार गेहूं करा, सरसों कर ली, सरसों में तो फिर गेहूं कर देंगे, बाजरा कर लेंगे, फिर बाजरे वाले में गेहूं ही होंगे, सरसों नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही बात।
0: अब ये क्षेत्र का फर्क पड़ता है, सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से खेती होती
1: करते हैं, मिट्टी का भी होता है, अलग अलग
0: का फर्क है साहब।
1: तो ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई है कि अब धीरे धीरे सबको एक तो फसल चक्र नियम अपनाना है किसान भाइयों, और रसायन मुक्त खेती करनी है जिससे कि अपने जमीन का स्वास्थ्य भी सुधरे और अपना और पशुधन का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। अच्छा, आप पशु भी पालते हो?
0: हाँ पालते हैं सर।
1: तो अभी किस तरह से उनकी देखभाल कर रहे हो आप?
0: अब तो देखभाल ये है सर कि गर्मी पड़ रही है और ये मौसम ऐसा ही हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: जब
1: सही
0: ज्यादा गर्मी पड़ी तब तीन तीन बार नहलाने पड़ते थे वो।
1: अच्छा,
0: फिर पानी का भी शुद्ध बोई करनी पड़ती है, पिलाना पड़ता है कई बार। फिर उनको खान पीन में
1: क्या देते हो?
0: हम सर चूगन उपयोग में लेते हैं ज्यादा, तो चारा हरा कर रखा है, हरा चारा चाहिए,
1: उसकी कुट्टी करके खिलाते हो
0: मशीन से कुट्टी करते हैं।
1: अच्छा, उस सूखे चारे में मिला के?
0: हाँ वैसे खिलाते हैं तो साहब उसके क्या भैंस क्या पच हो जाती है
1: जी,
0: नुकसान करती है वो, भैंस खा नहीं पाती है उसे और कच्चा नहीं आ रहा भी
1: बिल्कुल।
0: और थोड़ा पक जाए सर जब उसको हम कुट्टी करके तब उसको तूड़े में भूसे में मिला के तब खिलाते हैं।
1: अच्छा।
0: और फिर उसमें आटा भी देते हैं, फिर चून दड़िया है जो मिलाएंगे उसका भी उसे भी देंगे, सरसों भी दे देते हैं। तो ऐसे क्या सर पशुधन को भी बड़ी सेफ्टी करनी पड़ती है, छान के देते हैं तूड़ा भी, बिना छने तो तूड़ा भी नहीं देते हैं।
1: मिट्टी आती है उसमें?
0: हाँ मिट्टी आती है सर, बहुत मिट्टी आती है, उसको साफ करके जब तो करते हैं।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। और जैसे कोई दूध देने वाला जानवर है तो उसकी और ज्यादा सार करते हैं?
0: नहीं सर उसकी ज्यादा वो करते हैं हम देख रहे, क्योंकि वो दूध दे रही है तो उसके खान पीन का भी थोड़ा अलग हिसाब रखते हैं। जो नहीं दूध दे रही उसको कम करते हैं, उसकी ज्यादा है, जैसे बाट वगैरह रांध लिया या लपटा या कुछ भी जो कहारा, चने ले आए, सरसों का मिक्स कर लिया, मेथी दे दी ठंड के लिए, गर्मी नहीं करे इसको।
1: सही बात।
0: तो ये है साहब उसको क्या जानवर को ठंडी चीज ज्यादा खिलाते हैं।
1: हाँ, गर्मी के मौसम में
0: हरा जानवर है जैसे पेट में बच्चा है तो उसको थोड़ा हम गर्मी का नहीं खिलाएंगे, ठंडी चीज खिलाएंगे जिससे ना कि बच्चा उसका सेफ रहे।
1: सेफ रहे, अच्छी बात है। देखो, एक हर किसान पशुपालक भी होता है और पशुपालन उनके लिए जरूरी भी होता है क्योंकि एक दूसरे की पूरक है खेती और पशुपालन।
0: सब वो जरिया भी तो नहीं है ना इंसान, आप जब खेती कर रहे हैं तो फिर पशुपालन तो करेंगे करेंगे, उससे क्या एक थोड़ा सा सुविधा हो जाती है, खाद की हम उनको पूर्ति हो जाती है, खाद लाना नहीं पड़ता है,
1: सही बात,
0: घर का ही खाद हो जाएगा।
1: हाँ।
0: तो उससे क्या खेती में सुविधा होगी, खाद होगा तो पैदावार भी
1: अच्छी होगी
0: और फिर वो जानवरों के काम आने आए एंड में फसल,
1: बिल्कुल
0: कुट्टी कर ली तूड़ा कराया फिर वो जो सारे जीविका।
1: और घर में देखो अपन को खाने पीने के लिए जो दूध दही है अपने ताजा, जो उसे अपने खुद पशु रखेंगे तभी तो, अच्छी नस्ल के पशु रखना चाहिए किसानों।
0: हाँ सर रखने तो अच्छी तरह के चाहिए, पर साहब ये क्या है कि बढ़िया जो नस्ल के होते हैं उनकी सुविधाएं थोड़ी अलग होती है,
1: सुविधा तो देनी पड़ेगी
0: से होती है, अपने यहाँ का रहन सहन अलग है, उनको अलग चाहिए। अब साहब अलग अलग हिसाब में अलग एरिए से जानवरों को रखा जाता है।
1: अच्छा, अब ये बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश के पहले जैसे फार्म पॉन्ड है ये कुंडा खुदवा अपने, तो ये इनमें बारिश का पानी जो है इकट्ठा किया जाता है, क्या काम आता है, किस तरह से, अभी क्या काम करना चाहिए किसान भाइयों को कोई?
0: अभी क्या साहब हम ये कर रहे हैं कि कुंडे इनकी साफ सफाई कर रहे हैं, जो पिछली बार पानी के लारे जो मिट्टी गई उस मिट्टी को हम ट्रैक्टरों द्वारा या मशीन द्वारा उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात।
0: दौड़ मेंड करवा रहे हैं कि पानी वेस्टेज नहीं जाए और बहके इसी में आ जाए।
1: सही बात।
0: तो वो क्या साहब गहरा हो जाएगा तो फसल के लिए हमारे को काम आ जाएगा और हमारे एक स्टॉक हो जाएगा, सरसों बोएंगे, चने बोएंगे, गेहूं बोएंगे, तो उनके लिए हमारे को एक काम चाहिए,
1: रबी फसलों के लिए काम आता है,
0: उनके लिए हमको बहुत जरूरी है और बरसात का पानी हमको स्टॉक करना ही पड़ता है,
1: करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए।
0: हाँ, और डोरमेंट करने से क्या साहब उसमें आवक ज्यादा हो जाएगी,
1: आवक ज्यादा और शुद्ध पानी होता है बारिश का,
0: शुद्ध होगा तो वो काम आ जाएगा,
1: पैदावार भी अच्छी होती है इससे।
0: ओनली बेस्ट है।
1: अच्छा, इसका काम कैसे लेते हो, किस तरह से, किस विधि से, जैसे आप कोई फवारा सिंचाई से या पाइपलाइन से या?
0: हम तो क्या साहब देखो हमारे वहाँ पे मिट्टी अलग है तो हम फवारे तो काम में लेते नहीं है।
1: अच्छा,
0: फवारा हम लेते ही नहीं है, ज्यादातर कम लेते।

0: जब पानी अगर कम हो, बरसात जैसे नहीं हुई हो, तो हम फवारा लेते हैं, नहीं तो फवारा काम में नहीं लेते, इंजन लेते हैं, इंजन से पाइपलाइन से ही खेतों में दौड़ मेंड जो करते हैं उसमें हम पानी छोड़ देते हैं और वो बह के एंड में वहीं वो कुंडे में पहुंच जाता है, ओवर पानी भर गया तो वहीं चला जाएगा,
1: वहीं चले जाएगा। और ये जो फार्म पॉन्ड बनाते हो वो बिल्कुल ढलान पे बनाते हो, जिधर ढलान होती है,
0: जिधर ढलान होगा उधर ही ये फार्म पॉन्ड बनेगा, उससे क्या पानी का स्टॉक जैसे ज्यादा भी भर गया तो वो उसी में आएगा,
1: आएगा।
0: एक पानी लग गया फिर दूसरा पानी उसी से लग जाता है, पाइपलाइन सुविधा दे रही है,
1: पाइपलाइन पे भी छूट दे रही है,
0: हमको अनुदान मिल रहा है,
1: कृषि यंत्रों पे भी दे रही है,
0: कृषि यंत्रों पे भी दे रही है।
1: तो धर्म सिंह जी, और चलते चलते क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों से रेडियो के माध्यम से
0: कि जो अभी खेती है, अपन जो साफ सफाई ये खेतियों में जो कर रहे हैं इनको साफ सफाई करनी चाहिए, जैसे आने वाली फसल अच्छी हो, खराब नहीं हो, खतपार करवाने देनी चाहिए, ट्रैक्टर या मतलब जोत पत्ती से हो या प्लाउन से हो, उसको खेती को साफ सुथरी और जोतवा जो मिट्टी में धूप खाए तो वो सुविधा हो जाए, अगली फसल हम उनको फायदेमंद होगी, अच्छी आवक दे।
1: आपने हमारे साथ बातचीत की किसानों के हित के लिए।
2: अब सुनेंगे मनोरंजन के लिए एक और या लोकगीत।

किसान भाइयों, नया दौर की नई बातों में आप अब जानकारी लेंगे प्लास्टिक मल्च का उपयोग से फायदा। किसान भाइयों, प्लास्टिक मल्च कहीं हो जाए कि एक प्लास्टिक सीट हो जाए जिसको आप साग सब्जी करा चाह तो उसके लिए जो मेडबंदी बना खेत में और उसको ऊपर डाल दिया जा जिसु कहीं चे कि आपने खेत में एक तो या फायदो चे इसु के जो खेत में खरपतवार हो गए चे तो ये प्लास्टिक सीट डालवा सुबह खरपतवार ना हो गए और एक और फायदो चे इसु कि जो आपने नीचे मिट्टी में सु भाप निकले चे तो वह प्लास्टिक सीट सु पसीनो बनर भाप नीचे ही इसमें पानी को काम करे चे नमी संरक्षित को काम करे चे बहुत दिन तक नमी रह चे तो जल की भी बचत हो और आप साग सब्जी करेंगे तो प्लास्टिक सीट में जहां जहां आपाई में थोड़ा थोड़ा छेद करके जो कोई आपा लगावा चा सब्जी तो उनमें खरपतवार न होए नमी संरक्षित होए पौधा की अच्छे अंकुरण होगो बीज को और पौधा की बढ़वार भी अच्छी होगी और उनमें कई सारे जो कोई कीट रोग लागे ची ये भी न लागे तो आपा अच्छे उत्पादन मिले चे तो ये फायदा चे प्लास्टिक मल्च का उपयोग सो तो इको उपयोग करना चाहिए। किसान भाई जागरूक है वह कर भी रहा और एक फायदो ले भी रहा। अब चलता चलता सुनूंगा आपा मौसम का हाल। सवाई माधोपुर जिला को आज को अधिकतम तापमान रियो है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रियो है 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता रही है 43% और किसान भाइयों कुछ तापमान बढ़वा की संभावना है कल। एक साथ में अब कार्यक्रम को समय यही पूरा हो रहा है। ताको राजमल भाई बात चावे इजाजत कार्यक्रम समाप्त करवा की राम राम साहब।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषकों के लिए। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों के स्वर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म परिवार के इस नगमे से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म यादों की बारात से। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

और लीजिए सुनिए फिल्म कोरा कागज का ये नगमा। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद जी ने, गीत की धुन बनाई है आनंद जी ने और संगीत दिया है आनंद बख्शी ने।

पॉलिसी श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में सुनी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों का गाया फिल्म कभी कभी का ये नगमा। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है खयाम ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के स्वर। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजना

0: सुविधाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के

लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एस स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल

0: के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले नगमा सुनने के लिए हमें फोन कॉल किया है टिपरिया सागर मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, शांति, प्रियांशी, नंदिनी और माधव पटेल ने। तो लीजिए इनकी पसंद पर सुनिए फिल्म चाहत का ये नगमा।

और लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म प्रतिज्ञा से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने और सुनने की फरमाइश की है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह ने।

मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, व्योमिनी और पुरंजय। तो लीजिए इनकी पसंद पर सुनिए फिल्म रिफ्यूजी का ये नगमा।

मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और गुड्डू की पसंद पर लीजिए सुनिए फिल्म एक फूल दो माली का ये नगमा।

और लीजिए अब सुनिए फिल्म नरसिम्हा का ये नगमा। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है शक्तिनगर उदयपुर से जगदीश माटा और माधव नामदेव ने।

और लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए, फिल्म प्रेम पर्वत से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव और भारती राव ने।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म वंश का ये नगमा। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हरीश देशपांडे, महिमा मधुरा और उनके दोस्तों ने।

इसी नगमे के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंभौर चैनल है FM 101.5 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती कार्यक्रम में आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

0: इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।
1: आए तुझे भी नानी माता को माटी माता, मैं बोलू जो बोलू तो फिर चालू होगा हंगामा।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का

हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

नजर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

अनिर्जा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बार 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर

एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, पर कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नखमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की

0: आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.5 MHz पर ये आप
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.5 MHz पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। रात्रि के 11:20 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में सुबह 5 बजकर